0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंड में थोपलो 7 मेगाहर्ज़बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 1 तारीख भाद्र 16 गते मंगलवार आज मंगल चौथी को व्रत गर्ने दिन हो। धार्मिक महानुभावहरूले आज मंगल चौथी को व्रत गर्नु होला। मंगल चौथी चौथी तिथि आज 3:52 पल मात्र। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षेण कल्पै भरी।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्छन मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन

보니 순추 베리 보니 수나 오누 하와스 나올라 까타이 하루 घरका हो भनौला परदेशी जन हो जिलु हो मेरो घर थरिएके हो भनौला परदेशी जन हो चौला गाई मेरो थर ओ देवी एउटी खडा भइन जब तहाँ देखेर खुसी भए आपा

0: अपनी अर्कई तिर हजुरी के काम लागने यजीव सारै मोह भया मुता हजुर की एकै वचन ले गरी माया राखी बुझाई बक्सन होस अज्ञानी मेरो है सारै सोग गरी बसेको मथिया बिसको उमेर सम्मता तो सोग गरेको सपान सही हो अहिले कता हो कता
1: बोझ बिन अब आप ठुल्नाई गाउँ घर नाम मेरो अर्जुन हो रेनी पर थर नारायण।